0: on your local station, 88.6 Plenty Valley FM, The World at Night.
1: तुसी सुन रहे हो प्लांटी वैली एफएम, मैं हां बिक्की सिंह, प्रोग्राम गल्ला चुगल। मेरे नाल बैठे ने जी डॉक्टर हरजिंदर सिंह जी और असी प्रोग्राम के दौरान तो प्रोग्राम तो बाद भी जो तो गीत चल रहा सी यही गल्ला कर रहे कि जिंदगी साढ़े किन्ना अमीर फलसफा मिलया है किन्नी साड़ी इन्नी अमीर विरासत है तो कई बार असं अपने आप में यह अभागी समझते हैं कि असी प्रदेशों च आ गए हैं तो उन्होंने गलों तो उस अमीर विरासत तो असं बेत्याने हो जाने हैं तो शायद इस करके ही अज हरजिंदर सिंह जी साढ़े को आए हैं कि उन्होंने जोड़े जिंदगी के तजर्बे ने निचोड़ ने वो सामभ के असी उन्होंने कुछ साझा पा सकी लम्मा समा तक इस प्रोग्राम वक् वक् जरिए सुन सकते जे ता कि लोगों तक पहुँच सकता है। हाँ जी सर तो माड़ू राम हूँ की गल कर रहे जिला संगरूर च पिंड पैंदा पिंड लसाणी
2: हाँ लसोई लसोई जी
1: हाँ जी
2: तो यह हूँ जिला मलेरकोटला
1: अच्छा मलेरकोटला जिला बन गया जी
2: हाँ जी हाँ वह पिंड है काफ़ी व्डा पिंड है लसोई और लसोई पिंड के नाल एक पिंड है जो शायद पढ़िया भी हो गया सुनया होगा वह हैगा रबों
1: रबों
2: रबों
1: वाजी वाह
2: रब के नाम तो रबों
1: क्या बात है
2: ते
1: रबों वसया पिंड
2: है हाँ रबों रबों जेड़ा वह भी दो ने एक रबों उची एक रबों नीवी ते रबों दे पिंड दे ना ये नहीं हूँ मैनू पता कि रबों उची दे के नीवी दे पर मैं तो लगता उची दे ही सीखे क्योंकि दोनों शख्सियत ने जिन्हों की मैं गल करदा ओ बहुत वड्डिया शख्सियत हुई हैं
1: अच्छा जी
2: तो मैनू लगता भी रबों उची तो ही हो
1: सदा उन्होंने करके उची के कहते
2: इस करके उची हो
1: क्या बात
2: है पहली शख्सियत है वह बड़ी तारीखी शख्सियत है वो है ने बहुत व्डे मतलब वॉरियर भी होए ने ते भाई महाराज सिंह
1: भाई महाराज सिंह अच्छा जी
2: भाई महाराज सिंह ने जेड़े बहुत जदों अंग्रेज दा राज आया
1: अच्छा जी
2: जा आ रहा से ते ए सिख फौजां वल्लों लड़े ने
1: अच्छा जी ये अपने अंग्रेज पैर पसार रहे से उदों जी
2: हाँ जी और इन्होंने बगावत की थी बहुत बड़ी वड्डी बगावत इन्होंने की थी सी और इन्हें बड़ी फॉलोइंग सी और ये अमृतसर दे विच एक डेरा उत्थे मतलब सेवा करदे सीगे तो इन्हों बारे जो मैं सुनया वो ये है भी इन्नी इन्हों की कमाई सी कि एक दफा यह होया भी जेडे कड़ाहे दे विच दाल बन रही सी लंगर लई वो कितने जी कड़छी सी या कड़छा सी वो कितने गुम गया तो दाल हिलानी सी तो इन्होंने अपनी बाँह के नाल ही सारी मतलब उदों दाल हिलाई तो जदों किया तो यह हर एक महाराज जी कहें होंगे सी जो बंदा मिलना आओ जी महाराज जी आओ जी इन्हों का ना ही महाराज
1: महाराज पै गया
2: अदरवाइज इन्हों का अपना ना टहल सिंह से
1: अच्छा जी
2: तो यह फिर अंग्रेजा ने इन्हों काले पानी भेजता
1: अच्छा
2: काले पानी तो भी अगे काले पानी तो भी अगे काले पानी वह होंदा सी सिंगापुर
1: अच्छा
2: जिन्हों सब तो वीडी सजा देंदे सी ना उन्होंने अपन पता अंडेमान निकोबार भेजते थे इन्होंने काले पानी जिन्हों उदू भी वीडी सज़ा देनी होंगी सी उन्होंने सिंगापुर भेजते से क्योंकि होर दूर से हिंदुस्तान तो
1: अज के जमाने से लोग सिंगापुर जाना
2: अजक वैसे जाते हैं वीजे लवा के
1: क्या बात है अच्छा
2: सो सिंगापुर अज भी उन्होंने समाध आ उत्थे उन्होंने लोग जदों भी कितने जाते हैं तो उन्होंने उत्थे उन्होंने मानते ने सत्कार करते ने सो मैं गल कर रहा रबों की एक तो उत्थे की शख्सियत भाई महाराज सिंह होए तो इंटरनेट से देखोगे तो भाई महाराज सिंह बारे काफ़ी कुछ तो मिल जाता दूजी वीडी शख्सियत होए ने प्रोफेसर दिलीप कौर टबाणा
1: अच्छा जी वाह जी वह भी रबों पिंड
2: वह भी पिंड रबों के
1: वाकई
2: जेड़े बहुत वड्डी शख्सियत
1: रबों के ने क्या बात
2: हाँ और बड़े नामवर हस्ती
1: हाँ जी हाँ जी
2: हाँ मैनू बहुता बयान करने की लोड़ नहीं
1: हाँ जी हाँ जी
2: जो उन्होंने लिखा ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ
1: ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ
2: ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬੋਂ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਛੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ
1: ਮਨਜੀਤ ਟਿਵਾਣਾ
2: ਹਾਂ
1: ਸੋ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਰੱਬੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲਸੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਲਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ
1: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਕੱਲੜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ
2: ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਾੜੂ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਦਿਖਾਈ ਆ
1: ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ
2: ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਯਾਦ ਸੀ
1: ਹੋਰ ਜੇ
2: ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਸੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਯਾਦ ਆ
1: ਅੱਛਾ ਜੀ
2: ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਪੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ
1: ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
2: ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ
1: ਅਤੇ
2: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਮਾੜੂ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ
1: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ
2: ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਭੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
1: ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੇੜਾ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਲਸੋਈ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ
1: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫਿਲਮ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਯੋਗੀ ਗੀਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੀਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ